0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. This is Laika Radio, Greater Manchester.
1: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिले। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: किक स्टार्ट योर डे द राइट वे विद ब्रास्को ऑन लाइका रेडियो।

0: गया यार।
1: लवली वॉइस एब्स.
0: सॉन्ग ऑफ द डे इज मेहंदी रिंग सेरेमनी आज रखवा के बैंड बाजा माई
1: Rather,
0: तेरे
1: I mean, there was something there.
2: गया। हाय, टुडेज सॉन्ग इज आई थिंक द वन बाय
1: Oh my God, Hina, hi.
2: Hi, today's song is I think the one by Noor Jahan, and it
1: Yes.
2: goes like उड़ता दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उत जोर चन नहीं चलदा आवेंगे ते मन आवे ते मैं आवेंगी मैं हाथ जोड़ के माही में तू सके तकेड़ गल दा
1: Sing it.
2: साढ़े पैरा विच बेड़िया पा के साढ़े पैरा विच बेड़िया पा के ते खोरे माही किथे रह
1: I'll
2: गया
1: tell you what, you get one of those. That was sick.
0: सानू नेरे वाले बोलते भुला के सानू नेरे वाले बोलते भुला के तेरे कोरे कि तेरे
1: Go
0: गया
1: on, Aisha.
3: ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया।
1: जवाद भाई.
0: हेलो धोनी,
1: आया.
0: टुडे सॉन्ग इज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू धोनी। सॉरी आई डोंट नो लिरिक्स ऑफ टुडे सॉन्ग।
1: Ah, don't worry. You know why? Because I'm going to play it for you as well. Morning, Vasha. Today's song officially was an old school classic anthem. And you heard it right. Noor Jahan. Normally don't play music like this here at Like a Radio, but you know what? On your job then. Sab kuch ho sakta hai. Hopefully, thanks to Raj Badan, it won't be my mother and then. Nahi, Raj, nahi.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
4: Okay. Yeah, love you too.
5: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
6: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है. भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं. उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है. ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
7: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
8: Punjabi Hits of the Hour with Tabish.
9: Right, Janab, welcome and once again, good morning. Thursday morning. Jumarat ki ek bhigi bhigi subah. और प्यार भरा अंदाज, मखसूस अंदाज, प्यार भरा पंजाबी गीत. लव यू ऑल.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: US dollar 1.31 Indian rupees mein 125 rupaye 15 paise Pakistani rupees mein 366 rupaye 34 paise Bangladeshi taka 164 taka 71 paise Sri Lankan rupees 438 rupaye 43 paise aur Afghani rupees 86 rupaye 7 paise.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ अल्वाना का पैगाम दुबई के लिए नई ऑफर £629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स ट्रेवल बाय 10 दिसंबर एमिरेट्स एयरलाइन से आपको जाना होगा और टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी कॉल कीजिए इन्हें अभी 02088434444 या विजिट कीजिए southalltravel.co.uk
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio. News update.
1: और अब न्यूज अपडेट उर्दू के खास खास हेडलाइंस. पेशावर में स्कूल की एक छत गिरने से 30 अफराद जान बहक. सोहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला तकरूरी के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार. कराची में ट्रेन की कार से टक्कर नेटी जेटी पुल से नीचे गिर गई. अमेरिका में एक मंदिर में फायरिंग की मनसूबाबंदी 19 साला नौजवान गिरफ्तार. इस्तांबुल में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल एक लड़का जान बहक. अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने खुद से मजीद ईरानी रहनुमाओं को निशाना ना बनाने का वादा किया है. अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ तमाम बमों की मां इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि खुफिया मालूमात लीक करने वालों को गोली मार देनी चाहिए. जर्मनी में रोबोट पर लड़की को गलत अंदाज में छूने का इल्जाम. इंग्लैंड और वेल्स में गाड़ी चोरी की वारदातों में 50% तक इजाफे का इंकशाफ. आबनै हरबस के करीब प्रोजेक्टाइल टकराने से मुतासिरा बहरी जहाज डूब गया और दुनिया भर में फिजाई सनत में हुनरमंदी अफरादी कुवत बड़ा मसला बन गई. भारत में काक्रोच जनता पार्टी के दोनों दो रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया. तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस. मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर.
0: इबन तबीश ऑन द मिड मॉर्निंग शो
2: लाइका रेडियो.

0: क्या कहना जी, पहला यारा ना हो, पहला प्यार हो, पहली मोहब्बत हो या पहली मुलाकात या पहली जुदाई, जुदाई पहली और आखिरी होती है साहब। कहते हैं जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, ये जिस्म तो फानी है, इसे सजाने की जरूरत क्या है, और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, बस ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, और इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। भाई वाह आज भाई, मेरे भाई जान। गुड मॉर्निंग साथी दोस्तों, सुबह के 10:40 हो गए, 40 मिनट जुमेरात की एक मुस्कुराती और गुनगुनाती सुबह।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों की जानिब से वही पैगाम जो रोजाना आपको बताता हूँ कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या इनके किसी ब्रांच में जाएं। आज क्रेडिट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज, तकरीबन 125 रुपए 40 पैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Leica Radio.
0: Leica Radio Greater Manchester se jumerat ki subah. जुमेरात के दिन हफ्ते के काम के आगाज का चौथा दिन और ताबिश का तीसरा शो। जी हाँ जी, एक दिन गैप हो गया था, मंडे को मैं नहीं आया था। मैं भी कितना खराब हूँ ना, रोज याद दिलाता हूँ आपको। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम की रूपरेखा को और फॉर्मेट को या आज के सेगमेंट को आपको बताने से पहले पहले रब्बे जलील का बाबरकत नाम, उसी नाम से इब्तदा करते हैं अपनी बज्म की बज्म ताबिश जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो हुआ करता है। सुनते कहना और काम करते हैं तो मैं हूं आपका मेजबान इब्ने ताबिश। कल जुमा होगा, आज जुमेरात है और अक्टूबर महीने की 15 तारीख। जी हाँ जी, 15 अक्टूबर सन 2026 का 10वां महीना। आज हमारी डायरी के पन्ने पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल अगर आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा है, होने वाला है, किसी की बर्थडे है, जन्मदिन है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद, जीते रहिए, खुश रहिए, चश्मे बद्दू। अच्छा जी, वैसे भी शादियों का महीना है और शादियों का तो महीना रोज ही होता है साहब, शादियों के दिन कब नहीं होते। वैसे ही सूरत हाल में हमारे गुलाम अली भाई हैं और उनके नेफ्यू की भाई जो है वो कल उसका निकाह है, माशाल्लाह कल जुमे का दिन होगा। जी कल है तो हम कल भी यहाँ मौजूद है।

लेकिन कल हाँ आप बिजी होंगे मुझे पता है। लेस्टर में ये शाम होगी कल और वहां आपके नेफ्यू का जनाब निकाह है। बच्चे का नाम है आदिल। हाँ आदिल, आदिल को मेरा सलाम और बहुत बहुत बताए कहिएगा गुलाम अली भाई। और उनकी जो होने वाली पत्नी है उनका नाम है फरहाना। जीती रहो फरहाना बेटा, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से बेस्ट विशेस फ्रॉम ईसा, ऑल एंड ईसा एंड आदम। और ये गाना मेरी तरफ से। आदिल, हाँ आदिल और फरहाना के लिए फ्रॉम लाइक रेडियो ग्रेटर मैन।

0: भेज मेरा आज का मौसम और वो भी बेईमान मैं तो मेरा दिल भर जानी जरीन इस वक्त ड्राइव कर रही हैं और जितने भी मेरे बहन भाई मेरे दोस्त इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं जरा ध्यान से भाई ध्यान से मुझे पता है फिल्म का नाम साला साहब लाइक अ रेडियो हाय अली एजाज साहब अदकारा मुमताज 80s का जमाना हमारा जमाना और थोड़ा थोड़ा VCR का जमाना घर पे हैं काम पे हैं ड्राइव कर रहे हैं तमाम साथियों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से खुशामदीद एंड वेलकम गुलाम अली भाई आपने शुक्रिया अदा किया शुक्रिया किस बात का ये रेडियो मेरा नहीं आपका है कल की गैर हाजिरी के बाद आसिम आज मौजूद हैं आसिम वालेकुम सलाम जीते रहो पहलवान से जाद भाई हमारे साथ हैं क्रिंटन में और शुमाइल नवीद आपका बहुत शुक्रिया कजोरी जी वेलकम एंड हाउ आर यू आज कैसी तबीयत है आपकी नसीर भट्टी हमारे साथ हैं लेस्बन में मलिका हमारे साथ हैं जी मलिका कहती हैं अच्छा नाम की गलतियां छोटी सी गलती मेरी कोई माफ नहीं करता बात यह कि मैं चाय बहुत गर्म पीता हूँ मेरी जबान जल जाती है रोजाना हाँ शुक्र करो जबान जलती है और अगर बात करो इस जबान के चलने की तो आय हाय हाय हाय कैसे कैंची की तरह चलती है ना खालिद महमूद भाई आपकी पसंद का भी था ये गीत पंजाबी गीत तो आपका नाम भी हुआ जमशेद चौधरी भाई ने पूछा था आज कौन सा पंजाबी गाना लगेगा लो जी हमने तो लगा भी दिया आपके लिए प्ले भी कर दिया बरी में हमारे साथ है जी चंदा अमन और लैला नायाब हमारे साथ निभाएंगे नायाब बहुत शुक्रिया शमीम बानो बेगानी हमारे साथ है अदनान रोशडेल में और गजाला जमी इम्तियाज भाई सनोबर और युगेश भाई लंदन में अरशद मुगल भाई आपका शुक्रिया वालेकुम सलाम सीमा हमारे साथ है सीमा थैंक यू वेलकम एंड हमजा अब्रार भाई शहजाद वजाहत साजिदा सुम्रो फरजाना एंथनी भाई और रुखसाना आमिर
1: We are the Leica Radio Network. Now with 3 Asian radio stations in the UK.

0: Ni tararuru kya hai bhai subah subah. किसी ने मुझसे पूछे क्या बात है ताबिश भाई आज उदास गीत लगाए हैं. खैर तो एक कब इम्पॉसिबल दुखी गाने मैं कोई नहीं लाड़े. कहते हैं कि उतरा नहीं है दिल से वो कोशिश के बावजूद. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद बाबुल सुप्रिया और अलका याग्निक के साथ साथ. उतरा नहीं है दिल से वो कोशिश के बावजूद एक शख्स मेरी जात पे हावी है किस कदर. थर्सडे मॉर्निंग
1: rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
0: Haan ji, Greater Manchester, Greater Bradford, Leeds, Huddersfield, Midland, Halifax, Yorkshire and Derbyshire and Cheshire ke kuch kuch hisson mein.

0: दीवाने हुए हम
1: डांस विद ताबिश
2: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम
1: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम अपने अंजाम से वाकिफ हूँ मैं मगर अपने अंजाम से वाकिफ हूँ मैं बस मुझे एक शख्स ने दीवाना बना रखा है
2: कमी हमें न करना प्यार कम सना
1: समीर मिर्ची वाला
2: दीवाने हुए हम
1: झूमते नाचते गाते जुमेरात की सुबह और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप सबको खुश आमदीद घर पे हैं काम पे हैं ड्राइव कर रहे हैं किचन में हैं डांस कर रही हैं देख लो कहीं हांडी ना गिर जाए
2: दीवाने हुए हम दीवाने
3: हुए ये है लाइका रेडियो No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
6: Jaimin Foods desi cravings available at nearest ethnic grocery stores.
8: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 के करीब है हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं छोटी शावर लें लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें पानी कीमती है इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें
4: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक है उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है ममता की छाँव माँ से पाएं प्रेम के दीप हर घर जलाएं माँ स्कंद माता का आशीष मिले हर परिवार में खुशियों के फूल खिले लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
9: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है स्टार टूर्स ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
10: वीसीआर का जमाना विद ताबिश
1: गुड मॉर्निंग वंस अगेन जुमेरात की सुबह वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है डॉक्टर अल्ताफ अलवी साहब वालेकुम सलाम जीते रहिए खुश रहिए एजाज भाई मैनचेस्टर में एजाज भाई नदीम अजहर बाजवा बोल्टन में आमिर लीड्स में मजर भाई

0: कोई जादू।
1: जादू नगरी से कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार रफी साहब और आशा जी की आवाज, और बीच पे शमशाद बेगम भी हैं। कजूरी जी आपके और अफशन जी आपके लाहौर में, और इस गीत को हम नाम करेंगे शमीम बानो बेगानी आपके भी हैं।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Currency rate US dollar 1.31, maafi chahta hu 1.31. Indian rupees mein 125 rupees 15 paise, Pakistani rupees mein 366 rupees 34 paise. बांग्लादेशी टका 166.71, श्रीलंकन रुपीज 438.43 और अफगानी रुपीज 86.07।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: LIKA Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: Ji haan ji, sone ka bhav hamare yahan ho gaya ji, 100 pound 10 penny hai ji, 100 pound per gram 10 penny plus. और पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 36,950 रुपीज ओनली।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
4: लाइक अ रेडियो
2: इबन एट हबीश on LIKA Radio, Greater Manchester.
4: LIKA Radio.
2: LIKA Extra Podcast Update.
1: राइट जनाब, ब्लैक रेडियो की पॉडकास्ट अपडेट एपिसोड नंबर 37 को होस्ट कर रहे हैं सैंडी शाह, और इनके साथ बैठ के गपशप कर रहे हैं राजबदन, दीप राजा, विश पटनागर, और जिस मौजू पे ये बात कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो है जी लाइका मैन अनफिल्टर्ड। भला क्या, मुझे क्या पता, आप जाके देखें।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर,
4: ये है
2: लाइका रेडियो।
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
5: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, LIKA Radio Network.
7: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
8: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
7: Not with SIMZI. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock, and you're ready in just 3 minutes.
7: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
8: SIMZI, powered by LIKA Mobile. Check if your phone works at SIMZI.com. Terms apply.

0: ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your business on Like a Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@likeamedia.co.uk. Punjabi Hit of the Hour with Tabish.
5: और एक बार फिर से पंजाबी का तड़का जमशेद भाई ने कहा ताबिश भाई अफशा की आवाज का कोई पंजाबी गीत आपके पास हो तो यकीनन क्यों नहीं भाई फिल्म का नाम नौकर वोटीदा याद है ना वो अदाकारा मुमताज का आखिरी सॉन्ग ओह माय गॉड ये है लाइक रेडियो गेटर मैनचेस्टर

0: 66 के जमाना मैंने दूर जाना पे गया। ये है गुलकार आफशा जो अब नहीं गाती। 70s और 80s के जमाने की सुपर डुपर हीरो हमारे मनोवर जरीफ साहब की फिल्म थी, यादगार मूवी नौकर वोटीदार। जमशेद भाई चेस आई कि नहीं आई, इसी गीत को नाम करेंगे हम। चीमा भाई आपके, बाबर भाई आपके, फरीद भाई कराची में और उनकी पूरी टीम के नाम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, जनाब, State Bank of India की जानिब से पैगाम, SBI वालों का पैगाम, ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं और इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं। आज के रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 124 रुपए 95 पैसे।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester.
0: Like a radio. हाँ जी, like a radio. सुनते कानों और काम करते हाथों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम के आज के फॉर्मेट को और उस तरतीब को जो हमने और आपने मिलकर आज प्रोड्यूस किया है अपने प्रोग्राम को। मजर भाई लीड्स में आप हमारे साथ हैं, आपको कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं ऐसे गीतों से। भाई हर गीत, हर गाना, हर वो लम्हा, हर वो ड्रामा, हर वो कहानी की जिससे आपको माजी याद आ जाए।

0: इंसान के अल्फाज पर नहीं, उसकी नीयत पर गौर करो. क्योंकि कोई डांट कर आपको भला चाहता हो, कोई डांट कर आपका भला चाहता हो, तो कोई मुस्कुरा कर आपकी जड़ें भी काटता होगा.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: किसी की डांट और किसी का प्यार, किसी का तंज और किसी का मजाक, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का. मजर भाई कहते हैं शुक्रिया ताबिश भाई मुझे याद करने का. अरे याद तो उन्हें किया जाता है मजर भाई, जिन्हें

0: बाबल सिप्री और साधना सरगम। मजर भाई ने हमसे कहा कि लीड्स में किताबिश भाई, ये सॉन्ग वैसे ओरिजिनली पाकिस्तानी था ना? हाँ हाँ बिल्कुल था साहब, आप कहें तो वो भी सुना दें आपको। कहते हैं कि सादगी इतनी भी नहीं अब बाकी मुझ में, सादगी इतनी भी नहीं अब मुझ में बाकी, तू वक्त गुजारे और मैं मोहब्बत समझूं, हाय हाय कि तू वक्त गुजारे और मैं मोहब्बत समझूं, मैं तो सारी दुनिया भुलाए बैठा हूं। रुखसाना इलाही हमें सुन रही है लिवरपूल में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Like a radio.
3: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे इन वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHS GM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHS GM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: Sunshine, skyscrapers and souks for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
10: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
11: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
12: Okay. Yeah, love you too.
13: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
2: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: और जी हाँ, वेलकम बैक जनाब। आप कहें और हम न सुने, ऐसे तो हालात नहीं।

0: Leica Radio.
1: क्या बात है साहब, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो। बिल्कुल दुरुस्त कहा जमशेद भाई आपने भी, और हमारे बहुत से साथियों ने। रुखसाना इलाही हमें सुन रही हैं लिवरपूल में, अब बिल्किस बहन हमारी हैं, एक बिल्किस होती हैं टीएनए टीम में और एक होती हैं ओल्डहम में, ओल्डहम में होते हैं आसिम और शिराज। बिल्कुल जी ओरिजिनल, बहुत अच्छा आपने कहा कि वैसे बॉलीवुड वालों ने भी बहुत अच्छा गाया था कुमार सानू ने उस गीत को जो आपने इससे पहले लगाया था, लेकिन बहरहाल ओरिजिनल जो हमने सुना था और सुनते आए हैं मेहदी हसन खान साहब की आवाज में, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आमिर सुन रहे हैं हमें, आमिर है जी हमारे साथ जी तमिल में, आमिर हमारे साथ हैं, ड्राइव करते हैं दिन भर। हाँ जी, वो तमाम साथी, वो तमाम दोस्त, चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हैं या कैब चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जहाज चलाते हैं या जबान चलाते हैं मेरी तरह, आप सबकी मोहब्बत और खलूस का, बेहद खलूस का, खलूस में जवाब। अब अगला ट्रैक हमें लेके जाएगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज का। इत्तेफाक से इस फिल्म का नाम है मोहब्बत, कि जिसका जिक्र सुबह से हो रहा है। अब आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बैक टू बैक गानों के बाद, और इंतहाई खूबसूरत आज की गजल होगी, यकीन ना आए तो इंतजार करके देख लीजिए।
0: A Leica Radio Classic plays now.
1: और एक बार फिर से VCR का जमाना,
0: VCR का जमाना विद ताबिश।

0: बिन साजन और वो भी झूला, कोई ना कोई तो झुला देगा। नदीम कहते हैं ताबिश भाई बस कर दो यार, सुबह के पराठे हजम हो गए हमें। अपने दिल में बसाया सुबह के पराठे हजम, और अब लंच टाइम शुरू। वादे की कोई बात नहीं है, वादा गया वो जो वफा हुआ। नायाब ने कहा ये सॉन्ग में दो तीन दिन पहले सोच रही थी, तो मुझे क्यों नहीं बोला। सावन का मौसम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मौसम अजीब गरीब है साहब, बेईमान मौसम। एक दिन धूप निकलती है, एक दिन छांव होती है, और एक दिन ठंड होती है। गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
4: Your Guzzle hit plays now on Leica Radio, Greater Manchester.
5: राइट जनाब, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून कहेंगे आपसे. खुश आमदीद. प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में गजल आपके लिए पेश करता हूँ. और आज ये गजल गुलबहार बानो की आवाज की गजल है. बहुत अरसे पहले मैंने इस गजल को आपके लिए पेश किया था और आज काफी अरसे के बाद मुझे याद आया अचानक. ये गजल मेरे लिए और मेरे सुनने वाले के लिए भेजी है रुखसाना इलाही ने, लिवरपूल से हमारी बहन ने. शुक्रिया रुखसाना बहन. वैसे भी आजकल वो जमाना अब रहा नहीं जो सच्चे खलूस और मोहब्बत का हुआ करता था. अब तो सब कुछ दुनियादारी है साहेबो. कहीं ढूंढने से भी चाहत नहीं मिलती. हर जगह हर लम्हा बस दुनियादारी. जुमेरात की दोपहर और गजल का वक्त.

हमने सारी उम्र गुजारी अपनी पहली मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी और इश्क में कैसी मजबूरी, और रोक सको तो उस पहली बारिश की बूंदों को रोको। लोगों का क्या है, लोगों को समझाने दो यार, उनकी अपनी मजबूरी है।

0: कह रहा था कि रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को रोको, क्योंकि कच्ची मिट्टी तो महकेगी, उस मिट्टी की अपनी मजबूरी ही। इस गजल को बहुत अरसे के बाद प्ले करने के बाद बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिला, बहुत सारे दोस्तों को बहुत पसंद आई, आप सबका शुक्रिया, आप सबके नाम। कहते हैं साहब चाहत, हाँ आज सुबह से चाहत ही पे तो बात हो रही है। वो चाहत जो कभी किसी को मिली तो कभी किसी को ना मिली, और अगर मिली तो किसी ने छीन भी ली। हाय, वो रिश्ते कभी भी नहीं टूटते, सुन लीजिए, वो रिश्ते कभी भी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो। हाँ, हमने एक उम्र गंवा दी तुम्हारी चाहत में, हमने एक उम्र गंवा दी तुम्हारी चाहत में। और कितने खुश होंगे वो, कितने खुश होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले, वो कितने खुश होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले। कहते हैं साहब कि हमें कोई पहचान न पाया, हमें कोई पहचान न पाया करीब से, क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। हमें कोई पहचान न पाया क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में। और जो लोग मुखलिस होते हैं, जो लोग मुखलिस होते हैं, वो पिंजरे खुले देखकर भी उड़ान नहीं भरते। नशरे में करर फिर से कहूं, नहीं समझ में आया। वो लोग जो लोग मुखलिस होते हैं वो पिंजरे खुले देखकर भी उड़ान नहीं भरते। और कहते हैं कि बहुत महदूद सा था एक हल्का अहबाब मेरा, बहुत बहुत महदूद सा था एक हल्का अहबाब मेरा, फकत मस्तियां शैतानियां नादानियां और मैं। और अब भी हल्का अहबाब महदूद है मेरा, अब भी हल्का अहबाब महदूद है मेरा, फकत खामोशियां, फकत खामोशियां, तन्हाइयां, उदासियां और मैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency rate ek baar phir se US dollar 1.31. Indian rupees mein 125 rupees 15 paise. Pakistani rupees mein 366 rupees 34 paise. Bangladeshi taka 164 taka 71 paise. श्रीलंकन रुपीज 438 रुपए 43 पैसे और अफगानी रुपीज 86 रुपए 7 पैसे।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, Southall वालों के पैगाम एक बार फिर से आपको बता दें कि दुबई के लिए बेहतरीन नई ऑफर निकाली है इन्होंने आपके लिए, और टर्म्स कंडीशंस जो है वो अप्लाई होंगी £629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स ट्रेवल बाय 10 दिसंबर, याद रखिएगा। और नंबर इनका है साउथहॉल वालों का 02088434444, और विजिट कीजिए अभी इनकी साइट पे southholltravel.co.uk।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like
0: a radio. जी हाँ जी, गोल्ड करेट हमारे आज 1 ग्राम गोल्ड करेट हो गया £100.10 पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड करेट आज 36,950 रुपए 36,950 रुपीस ओनली।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: sunshine, skyscrapers and souks.
1: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
1: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
1: Southall Travel. At all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties.
1: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events.
4: Powered by India Vala Paneer. Event managed by Jellyfish Events. Radio partner, Laika Radio Network.
7: Khakra Crunch, Bhakri Munch. Chikki Sweet, Papad Beat. Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
8: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
7: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
9: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
10: Okay. Okay. Yeah.
9: Love you too.
11: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
1: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at laikamedia.co.uk. A Laika Radio classic plays now. Now.
0: Now. Yeah, welcome back. And now, this song Lata Mangeshkar and Mahinder Kapoor Ji's voice. He's sent it from New York, Robin Bhai. Ne. तमाम लाइक रेडियो को सुनने वालों के नाम, खासतौर पर गुलाम अली भाई और फरीद भाई, अतीका जी और ताबीर के लिए, मेरे लिए नहीं।

0: मुझे अपनी आंखों में मुझे बसा लीजिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ जनाब, एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनकी कंपनी है यहाँ यूके भर में, मुस्तकिल बहुत सारी इनकी ब्रांचेस हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं, यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप की जो है ऐप को डाउनलोड कर लें और उससे फिर अपनी मनी अपनी रकम जो है वो इंडिया पहुंचाएं. आपको बेहतरीन रेट देते हैं. आज का रेट है 124 रुपए 95 पैसे.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय-टू-लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703403020.
0: Leica Radio. लीजिए जी, पैगाम आने शुरू हो गए और किसी ने पूछा तो फिर मैं अब चलूं. आप कहाँ? आप तो घर में बैठी हैं. चलूंगा तो मैं, जाऊंगा तो मैं, उठूंगा तो मैं यहाँ से. बट एनीवे कोई बात नहीं, साथ निभाने का बहुत सारी गपशप रही आज बहुत सारे दोस्तों से, खास तौर पे हमारी लाहौर में जापानी गुड़िया. रावलपिंडी में पैदा हुई थी, पली बड़ी, जवान हुई, फिर जापान चली गई, आजकल वापस लाहौर आ गई है. लेकिन आजकल इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद की यादें तो यादें हैं साहब, लेकिन वो लोग भी क्या लोग हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत. हाँ, शुक्रिया मलिका, आपने बड़ी देसी और बड़ी गाढ़ी सफेद दूध वाली चाय का कप मुझे भेजा है, लेकिन मैं तो इस वक्त चाय नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. लंच टाइम है भाई. ना ना ना, कोई ऑफर नहीं चलेगी. शफकत अली भाई हमारे साथ हैं. जी बहुत अरसे बाद आए शफकत भाई, कहाँ थे आप? कहीं हॉलीडे पे गए थे? कहीं घूमने फिरने गए थे क्या? बात आज इश्क पे चली थी, जो गजल हमने लगाई थी, तो इश्क पे बहुत सारी बातें आज बहुत से साथियों से हुई हैं. और अच्छा लगता है जब कभी कभार आप मुझे शायद अपना समझ के, तो कोई बात नहीं, समझा करें, मैं आप ही का तो अपना हूँ कि आप अपने अपनी कहानियों को, अपने दुखों को.

0: बातों को जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते लेकिन मेरे साथ शेयर करते हैं, ये आपकी जरा नवाजी है। तमाम साथियों दोस्तों का एक बार फिर से शुक्रिया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। दोपहर के 1:15 हैं, 1:45 पाकिस्तान में, शाम के 4:45 और न्यूयॉर्क में सुबह के 7:45।
1: Laika Radio. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: सनशाइन, स्काईस्क्रेपर्स एंड सूट्स
5: for less than you think. This is affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
7: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
8: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
9: Up next, Ravina Khan with the magazine show. Laika Radio, Greater Manchester. Ibanet Tabish on the mid-morning show.
10: Laika Radio.
0: साथियों दोस्तों, बस अब आपसे विदा होने का वक्त। आज की जुमरात की हमारी प्रोग्राम की जो रूपरेखा थी वो शायद आपको अच्छी लगी हो। आज के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, हमारा म्यूजिक, मैं बात यादों की कर रहा था, कहानियों की कर रहा था, उस तमाशे की कर रहा था जो जिंदगी में सबके साथ कभी कभी गुजरता है। जापानी गुड़िया, तुम्हारे नाम ये गाना।

0: Like a radio. जहाँ नींदें हराम हो जाती हैं, जिंदगी में बदलाव आ जाता है और जिंदगी का सुकून तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर ये दुनिया है साहब, दुनिया जो है वो नशीब और फराज का पेश खेमा है और कभी खुशी कभी गम, बस इतना सोच लीजिए कि जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया हमें किसी एजाज ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। और एक एजाज हुए जो रोजाना मेरे साथ होते हैं, नदीम ने कहा कि जाते जाते मुझे आतिफ असलम का गीत सुना के जाना। अच्छा, सज्जाद अली के सॉन्ग से पेट नहीं भरा, कोई बात नहीं। बहरहाल जी, आसिया जी आपका बहुत शुक्रिया, अफशा आप हमारे साथ रहीं, ताबीर आपका शुक्रिया, मलिका आपका शुक्रिया, कजोरी जी आपका शुक्रिया, शफकत भाई, शहजाद, खालिद महमूद भाई, नायाब आमिर जी तमिल में, युकेश भाई लंदन में, ताहिर सिद्दीक भाई लंदन में, रुखसाना इलाही लिवरपूल में, लीड्स में मजर भाई, नसीर अहमद भट्टी हमारे साथ लिस्बन में, हमजा एस पी, सज्जाद पहलवान, शुमाइला, नई मलिक, अंकल वकार, चौधरी अयाज, बिल्कीज भैन, टी एन ए की टीम, बरी में लैला, बरी में राहिल अजी, अमन, इम्तियाज भाई लंदन में, शमीम बानो बेगानी, अरशद मुगल, एंथनी भाई, सीमा, शिराज भाई कराची में, फरीद हुसैन भाई, मोहम्मद हारिस, हमजा, तो मुझे बस अभी इजाजत दीजिए प्लीज।
1: Ibn Tabish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
0: इसलिए मान अल्लाह, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, खाने पीने में एहतियात रखिएगा और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। See you tomorrow. हफ्ते का कल लास्ट मिनट मॉर्निंग शो होगा। एडवांस में जिम्मा मुबारक आप सबको, एंड खुदा पामान।

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: जी मैगजीन शो शुरू हो चुका. पहले दो गीत आपको सुनवाए जा चुके. पहला गीत जी करदा सिंग इज किंग 2008 की फिल्म से हमने लिया और इसमें आवाजें थी लव जंजू और सुजैन डी मेलो की. उसके बाद जो दूसरा सॉन्ग दगाबाज दबंग 2 फिल्म से हमने लिया आपके लिए राहत फतेह अली खान की आवाज के साथ. श्रिया घोषाल खूबसूरत जादूगरी आप सुन रहे थे. सो मैगजीन शो में बहुत सी बातें, बहुत से ख्याल या कोई सवाल या कोट ऑफ द डे, खबर पर नजर, कोई बात, कोई अच्छी बात, कोई दिल में रह जाने वाली बात या कुछ दिल को अच्छी लग जाने वाली बात जरूर होती है. मैगजीन शो है. सो साथ रहिए अब से लेकर 4 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा. प्लेलिस्ट इज लाइक गुड प्लेलिस्ट, यही कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से तरतीब दी गई है. आज भी उम्मीद करते हैं आपको गीत भी पसंद आएंगे. और अगर आप प्रोग्राम में कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं या हमारा सवाल जो भी आगे चल के मैं रखूंगी आपके सामने उसका जवाब देना चाहते हैं तो नंबर अभी से नोट कर लीजिए. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें 07703403020 पर आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. आज का सवाल थोड़ी देर बाद और आपका ख्याल थोड़ी देर बाद.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
4: दिल चाहता है on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase cinema.
5: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी है. तुम्हें क्या लगता है?
4: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
6: Passports, tickets, kids' tablets.
7: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
6: And checking in with grandma.
7: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
6: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
6: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Holiday sorted.
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: From Greater Manchester to Bradford and Leeds, this is Leica Radio.

0: जुनिता गांधी की आवाज अभी आप सुन रहे हैं कलंक फिल्म से, गीत कलिया 2019 की फिल्म राजबड़ी ओढ़नी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, जी मनी सेंड करने के लिए एक्सचेंज रेट आपको बता दें और आज अपडेट कुछ यूँ है कि £1 के एक्सचेंज में US डॉलर्स आपको मिलेंगे $1.31, इंडियन रुपीज 125.15 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज 366.34, बांग्लादेशी टकर्स 164.71, श्रीलंकन रुपीज 438.43, अफगानी 86.07 अफगानी।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Men's Mental Health Week starts this November. LIKA. A LIKA.

0: Magazine Show with Robina Khan.
1: ਜੀ ਚੰਨੀ ਫਿਲਮ ਸੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਅਭੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੀ ਔਰ ਜੋਲੀ ਮੁਖਰਜੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਥੀ ਇਸ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੁਛ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਯੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਸਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 15th ਅਕਤੂਬਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ जो रिलेटेड है हमारी हाइजीन से या खास तौर पे बच्चों की हाइजीन से वो है हैंड वॉशिंग हाथ धोने की अवेयरनेस और इस ये कितना ज़रूरी है और इससे कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है खास तौर पर बच्चों के हवाले से ये बात ज़्यादा कही और समझी जाती है तो हैंड वॉशिंग या हाथ धोना कितना ज़रूरी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर साल 700,000 बच्चे या चाइल्ड डेथ से बचा जा सकता है अगर बच्चों को हाथ धोने के लिए साबुन और पानी मयसर हो और इस मुल्क की बात छोड़कर दुनिया भर में कितने बच्चे हैं जिनको पानी ही नहीं मिलता तो हाथ साफ करने के लिए साबुन के साथ पानी की ज़रूरत है और जाहिर है कि पानी की बहुत कमी है दुनिया भर में जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प जो है वो सवाल जहन में उठता है कि जब हम नॉर्मल डे लाइफ में हाथ धोते हैं तो हाथ कितने किस तरह से या कितने सेकेंड्स धोने चाहिए ऑब्वियसली बाज़ लोग टैप के नीचे हाथ रखते हैं अंदर पानी बस गुजर गया हाथ तो हाथ साफ हो गए डिपेंड करता है ये कि आपके हाथ कितने गंदे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि हाथों पे साबुन लगा के अच्छी तरह से इसको जब तक आप रब ना करें दोनों हैंड्स को टुगेदर तो उसके बगैर हाथ साफ नहीं होते और एक दफा मैंने कोई बहुत दिलचस्प बात पढ़ी थी कि कितनी देर हाथ मतलब साबुन मलना चाहिए हाथों पे तो कहा यह गया बताया गया था कि जितनी देर में आप एक हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तो बस इतना ही इतनी देर हाथ अगर आप साबुन मलते हैं तो ये हाथ आपके साफ और हो जाते हैं हाइजीनिकली आप फिर उसके बाद खाना खा सकते हैं या अपने हाथों को क्लीनलीनेस जो है वो उसका भी एक इतना ज़बरदस्त एहसास होता है तो सफाई और हाइजीन जो है उसके हवाले से ये चीज़ है और इसको अपनी ज़िंदगियों में रखना चाहिए बाज़ लोग इतने मतलब ये कि हाथ धोते बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ नहीं धोते ये बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए पानी का इस्तेमाल जैसे कि हमारे कमर्शियल ब्रेक्स में भी आप सुनते हैं कि पानी को इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए दुनिया में पानी कम हो रहा है और सबको पानी की ज़रूरत है सिर्फ 1% है पानी दुनिया में यानी 70% दुनिया का हिस्सा जो है वो पानी का है बट स्टिल जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट्स ओनली 1% उस 1% में से कितना ज़ाया होता है ये हम और आप जानते हैं और हमें उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है टेस्टी ट्रैक की तरफ लेके चलती हूँ आपको
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: हमारे आपके सबके काम आ जाए. सो अभी मैसेज भेजा है नदीम अजहर बाजवा साहब, आपने लिखा है कि थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट हाइजीन. सो अभी मैंने फौरी तौर पर आपका मैसेज इसलिए भी पढ़ा है कि अगर आपको ये बात अच्छी लगी है या आपको लगा है कि ये हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना या पानी का अच्छा इस्तेमाल करना ये अच्छी बात है, तो इस बात को आप सिर्फ अपने तक ना रखिएगा, प्लीज़ इस चीज़ को आगे भी लोगों को ज़रूर बताया कीजिए. सही बात है कि रेडियो से बहुत से लोग हमें सुन रहे होते हैं और उनके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है. तो मैं उम्मीद करूंगी नदीम अजहर बाजवा साहब कि आप ये चीज़ आगे भी लोगों को बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हाथ धोने को, सफाई को, हाइजीन को, लेकिन ये हमारी सोसाइटी को खूबसूरत बनाती है. आपको इसके बारे में मैं मज़ीद तफसील नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोग सबको पता है कि हाइजीन कितनी ज़रूरी है. सो अभी आपको मज़ीद बातें सुनने को अच्छी मिलेंगी भी, और बहुत सी प्ले लिस्ट में अच्छे गीत रखे हुए हमने. गोल्ड रेट की तरफ चलते हैं फिलहाल.
1: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर. दिस इज लाइका रेडियो.
0: सो आज का गोल्ड रेट है 100 पाउंड्स पॉइंट 10, यानी 100 पाउंड 10 पेंस, और ये 24 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम का रेट है.
1: Gold Rate is brought to you by Harty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit hartyhanks.com. Like a radio. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. Is an opportunity. So now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions, and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet, or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange, or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: बात क्या है बंटू?
9: अरे बोलो काक बसुंडी.
10: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन.
11: मिनी क्या हुआ? क्या हुआ?
12: वैसे वैसे मैं
13: और लाइफ बन गई हेवन.
14: भाभी डायन है.
15: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
16: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई.
17: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय. नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16.
16: आप सिर्फ मजे लो.
18: Fancy winning something tasty on the side?
19: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
18: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
19: So order your Pepe's flame grilled piri piri Pepe-licious flavor and you could win big.
18: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Enjoy your Diwali with Carotino Better Ghee, the healthier, low-priced, cholesterol-free butter ghee alternative. Delicious Carotino Better Ghee is available from Tesco, Morrison's, Asda and local grocery shops. Look out for special Diwali offers on Carotino Better Ghee. In stores now.

0: मैं शानू की आवाज अभी आप सुन रहे हैं दिल का क्या कसूर फिल्म का नाम 1992 की फिल्म और अब पाकिस्तानी सॉन्ग की बारी
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट

बहुत मरतबा सुना ये सॉन्ग लेकिन हर मरतबा अच्छा लगता है लिहाजा और मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ देखो.

0: हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से कुमार सानू और सरिका कपूर की आवाजें आपने सुनी अभी और एंजॉय किया.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
0: radio. जी मैगजीन शो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसी तरह है कि लम्हा लम्हा पल पल आगे की तरफ लेकर चलता है घड़ियों के टिक टिक. बहरहाल एक सवाल है और ये सवाल भी एक ख्याल होता है, ये अपने आप से पूछने का या अपने आप को समझने का, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं. लेकिन जो सवाल है वो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है. हो नहीं सकता कि ये जो मैं अभी आपके आगे सवाल रखने वाली हूँ आप कहें कि इसका मेरे से मुझसे कोई लेना देना नहीं, या मुझे कभी जिंदगी में ऐसा वक्त ही मुझ पर नहीं आया, या मुझे नहीं पता इस सवाल का, यानी मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता. तो सवाल ये है कि क्या हम दूसरों को माफ इसलिए करते हैं कि वो इसके मुस्तहिक है. यानी कभी जिंदगी में आपने किसी को माफ ही ना किया हो, ये पॉसिबल नहीं है. और अगर ऐसा है तो जरूर फिर भी बताइएगा कि आपको कभी ऐसा माफी शाफी देने का कोई वक्त आया ही नहीं. सो सवाल एक बार फिर कि क्या हम दूसरों को माफ इसलिए करते हैं कि वो इसके मुस्तहिक है, या इसलिए कि हमें खुद सुकून चाहिए. थोड़ा सा इसकी वजाहत मैं कर देती हूँ. हर चीज की वजाहत होनी अच्छी बात होती है. और वो ये है कि बाज़ुकात आपको जहन पर एक बोझ हो जाता है. अगर कोई चीज आपको तंग कर रही है तो आप उसको उससे पीछा छुड़ाने के लिए या अपने सुकून को वापस लाने के लिए कोई आपसे माफी मांग रहा है, आप कहेंगे ठीक ओके माफ किया. और अगर आप ये चंद लफ्ज नहीं कहते तो आपके ऊपर बड़ा मसला है, क्योंकि आपको फिर खुद गिल्टी या गिल्ट या एहसास जुर्म का एहसास होता है कि कोई मांग रहा है माफी और आप नहीं दे रहे. तो अपने सुकून के लिए आप किसी को माफ करते हैं, या वाकई वो माफी एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ठीक है माफ किया. गलती इंसान से होती है, हर इंसान से गलती होती है, तो माफ किया. तो माफी की क्या सूरत हाल आपके नजदीक असल हकीकत है?
2: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events.
2: Powered by India Vala Paneer. Event managed by Jellyfish Events. Radio partner Laika Radio Network.
5: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all protected.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: लता मंगेशकर और उनके साथ ही गा रहे थे काला पत्थर फिल्म दूरों से बारात। ब्यूटीफुल ट्रैक सुन रहे थे आप।
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान।
0: जी खबर पर नजर डालते हैं और आज की जो खबर है वो एक बार फिर बच्चों के बारे में है। पहले हाथ की सफाई की बात हो रही थी, अभी ये लेटेस्ट ही रिसर्च है जहां पर बरतानिया की बात है कि 5,000 से ज्यादा बच्चों को 6 हफ्तों के लिए 6 वीक के लिए सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला किया गया। ब्रेडफोर्ड के 12 मुख्तलिफ तालीमी इदारों में होने वाली एक रिसर्च का बुनियादी मकसद इस बात का बगौर जायजा लेना है कि सोशल मीडिया तक रसाई को महदूद करने, लिमिटेड करने या इनसे काफी अरसे तक दूर रखने इसका बच्चों के बिहेवियर पर क्या असर होता है। सो 5,000 से ज्यादा तालिब इल्मों को इस तहकीक में शामिल किया जाएगा और अगर 6 हफ्तों के दौरान 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी या इनकी कड़ी निगरानी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। बाज स्टूडेंट्स को दिन में 2 घंटे के लिए तकरीबन 10 मुंतखब एप्स तक रसाई दी जाएगी। बाज को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ने की इजाजत होगी, ताहम इन्हें भी ट्रैक किया जाएगा। सो इसमें ये एक रिसर्च है और ऑब्वियसली इसका बहुत फायदा होगा। 5,000 एक बहुत बड़ी नंबर है जिन पर ये तहकीक की जाएगी। सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे क्या होता है और कितना मेंटल हेल्थ पर बच्चों की या उनके बिहेवियर पर असर पड़ता है। इसका कैचअप हम रखेंगे, आप तक पहुंचाएंगे जो है इस रिसर्च का आउटकम हमारे सामने आया। दूसरी खबर नाना पाटेकर के हवाले से है और एक ये नामवर भारतीय हदायतकार हैं कमलेश सामंत। उन्होंने एक इंटरव्यू में याद करते हुए नाना पाटेकर को एक बहुत ही जबरदस्त बात की, तो मैंने सोचा कि आपसे इसको शेयर करना चाहिए। एक तो ये कि हदायतकार ने कहा कि जहां अमिताभ बच्चन की फीस जितनी भी हो, नाना पाटेकर कहते थे उससे मैं 1 रुपया ज्यादा लूंगा। उनकी 1 करोड़ फीस है, वहां नाना पाटेकर ने 1 करोड़ 1 रुपया वसूल किया और उन्होंने याद कर रहे थे कि कैसे लोग उनके डायलॉग्स के लिए कितने मशहूर हैं। जस्ट इमेजिन कि एक शख्स की डायलॉग डिलीवरी ऐसा लगता था ये किसी ने उनके लिए नहीं लिखे बल्कि ये उनके दिल की जुबान है, ऐसे डायलॉग डिलीवरी थी। तो उन्होंने याद करते हुए कहा कि जिस तरह अमिताभ बच्चन की जब फिल्म होती है या थिएटर में लगती है तो सब लोग सांस रोककर या बहुत दिलचस्पी से उनके डायलॉग डिलीवरी को देखते हैं, इसी तरह नाना पाटेकर उन अदाकारों में से थे जिनके बोलते ही स्क्रीन थिएटर पर मुकम्मल खामोशी छा जाती थी। और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होता होगा और शौकीन इनका हर डायलॉग सांस रोक कर सुनते थे। इनकी फिल्में, इनके डायलॉग, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़ी शख्सियत थे और इनके हवाले से आजकल आपने पढ़ा भी होगा। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि जितना बड़ा कोई आर्टिस्ट होता है वो एज अ पर्सन भी अच्छा होता है। 100% तो ऑब्वियसली कुछ नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट दी जा सकती, लेकिन नाना पाटेकर के बारे में ये कहा जाता है वो काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स के प्रोग्राम्स में भी शामिल थे। बहरहाल अब इसी के साथ ही आपको मैं एक गीत की तरफ लेके चलूंगी। अहमद रुश्दी की आवाज है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी ट्रैक है ऑब्वियसली।
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले हर परिवार।

0: अब आप सुन रहे हैं यहाँ पर जैस्मिन सैंटलेस की लम्बा. जैस्मिन सैंटलेस
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अब आपको बता दें साउथ हॉल ट्रैवल के बारे में. ट्रैवल टू दुबई विदाउट प्राइस हैवी प्राइस टैग और ऑब्वियसली इसमें आपको ऑफर है. साउथ हॉल ट्रैवल ने आपको अफोर्डेबल दुबई ऑफर दी है विच कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट 629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स. ट्रैवल बाय 10th December. कॉल साउथ हॉल ट्रैवल ऑन 0208 844 4444 or visit southalltravel.co.uk. So that's southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
2: Like a radio.

अपना म्यूजिक का ये योनरा जो अभी आप सुन रहे हैं बहुत ही दिलकश है, बहुत ही हसीन है। लखविंदर वडाली की आवाज अभी सुन रहे हैं आप। मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया और वो लोग लकी होंगे जो इनके कॉन्सर्ट को लंदन में देखेंगे। This is Leica Radio, Grace

0: शुक्रन के थर्ड एंड फाइनल आवर में दो गीत आपने सुने रांचना फिल्म से. गीत अभी आप सुन रहे हैं जावेद अली की आवाज मेरी हर दुश्वारी तुम तक और इससे पहले आपने सुना इन दिनों और इन दिनों को हमने लिया लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से 2007 की फिल्म प्रीतम चक्रवर्ती सोहा चक्रवर्ती एंड सुहेल की आवाजें थी. सुन रहे हैं ब्लैक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में रुबीना खान द मैजिशियन शो के साथ हमारा और आपका साथ मंडे टू थर्सडे.
1: The Magazine Show with Rubina Khan.
0: प्रोग्राम के थर्ड एंड फाइनल आवर में हमारा जो सेगमेंट है कोट ऑफ द डे वो 3:30 पे होता है लेकिन इस ही हिस्से में मैं आपके वो तमाम मैसेजेस जिसमें हमारे सवाल का जवाब होता है और आज का सवाल ये था कि क्या हम लोग लोगों को माफ़ इसलिए करते हैं कि वाकई माफ़ी कोई मांगे तो उसको माफ़ी देनी चाहिए या इसमें हमारा भी अपना सुकून पोशीदा होता है. हम चाहते हैं कि हम इस उलझन से निकलें हम इस गिल्ट से निकलें और माफ़ी का क्या मतलब होता है कि दोबारा से ताल्लुकात करना या वापस दोस्ती में आना या फिर ऐसा नहीं होता. तो माफी के हवाले से फॉरगिवनेस या माफी के हवाले से बहुत से जवाब मुझे मिले हैं जो कि मैं शामिल करूंगी लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. और जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं 07703403020 पर आपका शुक्रिया.
1: The Magazine Show with Rubina Khan. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Khakra Crunch Bhakri Munch Chicky Sweet Papad Beat Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen Papad Pickles Chicky Pot Meals and much more.
3: Jaimin Foods Desi Cravings available at nearest ethnic grocery stores.
5: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
6: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है. अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं. हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 लीटर के करीब है. हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं. छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं, बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें. पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा. लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: वो जो धीमे धीमे सुर होते हैं वो ऐसे ही सुरों को कहते हैं. रूप कुमार और श्रेया घोषाल की आवाज, वीर फिल्म 2010 की फिल्म धीरे धीरे.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: मनी आपने कहीं भी सेंड करने हो, आपको एक्सचेंज रेट चाहिए तो करेंसी एक्सचेंज रेट की अपडेट कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी रुपीज आपको आज मिलेंगे 1 pound के एक्सचेंज में 366, इंडियन रुपीज 125.15, यूएस डॉलर्स 1.31 और अफगानी 86.07, श्रीलंकन रुपीज 438.43.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
3: Leica Radio.
2: A Leica Radio classic. Plays now.

0: Quote of the Day with Robina Khan.
1: So, आज की कोट जो है वो कुछ यूं है. एक तो ये कि ये एक फ्रांसिस काफ्का अदीब थे, राइटर थे, बहुत मशहूर. उनकी ये कोट है. सो इस कोट को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि आप दुनिया के दुखों से खुद को अलग रख सकते हैं. आप दुनिया के दुखों से खुद को अलग रख सकते हैं, ये आपकी आजादी है और शायद आपकी फितरत भी. लेकिन मुमकिन है कि खुद को इन दुखों से अलग रखने के लिए यही कोशिश वो तकलीफ हो जिससे आप बच सकते हैं. वो लोग जिनको इस तरह से उर्दू की समझ नहीं आ सकती, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ. लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश में रीड करें तो इट्स लाइक दिस के यू कैन होल्ड योर सेल्फ बैक फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. That is something you are free to do, right? And it is accord with your nature. But perhaps this very holding back is one suffering you could avoid. जो हम चीज होल्ड बैक करते हैं वो भी हमारे लिए सफरिंग पैदा कर सकती है. सो इसको थोड़ा सा अगर हम डी कोड करें या एक्सप्लेन करें फ्रांसिस काफ्का के इस कोट को, तो वो कुछ यूं बनता है कि हम अक्सर दूसरों के दुखों से खुद को बचाने के लिए लाताल्लुक हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं, किसी की परेशानी सुनने से गुरेज करते हैं, किसी के हक में आवाज उठाए जाने से डरते हैं, या ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि ये हमारा मसला नहीं. अगर आपको रास्ते में कोई ऐसे शख्स मिलता है या कोई भी मिलता है पर्सन कि आप कहते हैं कि वो ये मसले में है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने तो इसके लिए कोई मसला नहीं पैदा किया, लिहाजा मैं फ्री हूं टू गो फॉरवर्ड, और अगर ये है तो इसको जिसने तकलीफ दी है मेरा उससे लेना देना नहीं है, तो कभी कभी मुंह मोड़कर आप चले जाते हैं. लेकिन ऐसा भी होता है कि दूसरों के दुख से मुंह मोड़ने की कीमत हमें अपनी इंसानियत, ह्यूमैनिटी, अपने जमीर, अपनी जो आपकी सोच होती है और अपने अंदर के सुकून की सूरत में अदा करनी पड़ती है. हर दुख को दूर करना हम में से किसी के भी इख्तियार में नहीं है, ना हम कर सकते हैं. लेकिन एक चीज हमारे सबके इख्तियार में है, और वो ये है कि मुश्किल वक्त में उसका साथ देना जरूर हमारे इख्तियार में है. ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी की बात सुने, सिर्फ आपके कान इस्तेमाल होने हैं, आपकी तवज्जो उसमें इस्तेमाल होनी है. अगर वो तवज्जो और वो सुनाई आप किसी के लिए पेश कर दें तो उसका दुख काफ़ी हद तक दूर हो जाता है. और कभी कभी बेहसी भी हो जाती है जब हम कहते हैं कि नहीं, हमें क्या लगे, हमारा तो लेना देना नहीं, अब दुनिया के दुखों से हमारा क्या सरोकार है, हम अपनी बनी निबेड़े और हमें दूसरों से क्या. तो उसमें हम ऐसे एक बेहस नहीं होता जिसे इंसान बिल्कुल कोल्ड एंड बेहस बन जाता है. तो वो बेहसी जो है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने जहनी सुकून के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. इसीलिए तो अभी आज का जो हमारा क्वेश्चन था कि लोग माफ इसलिए कर देते हैं कि उनको सुकून नहीं रहता. लेकिन ये भी अनदर एक्सप्लेनेशन है उसी चीज की कि जब आप दूसरों से बेताल्लुक, लाताल्लुक होकर आगे बढ़ते हैं तो आपका अपना सेल्फ जो है वो आपको तंग जरूर करता है.
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: जो क्लासिक सॉन्ग पहले आपने सुने वो भी काफी इंटेंस थे, और अभी ये है कि अनदर वन. चलो

0: पाकिस्तानी क्लासिक सुन रहे थे मलिका तरन्नुम नूर छां की आवाज में। चलो वो जिसको टूटा फूटा दिल कहते हैं ये उसका गीत था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ऐसे गीत तो अच्छे लगते हैं, किसको नहीं अच्छे लगते, आपको भी लगते होंगे जरूर।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So, आज का गोल्ड रेट है 1 ग्राम गोल्ड का रेट 100 pounds है।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Leica Radio.
0: और अब आपको कुछ आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से न्यूज है जहाँ जो आप नोट कर सकते हैं। जाना चाहें तो जरूर जाएं। लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट, पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली, फ्राइडे 16th October एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ, संडे 18th October एट ICC बर्मिंगम में आप ये कॉन्सर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा कविता कृष्णमूर्ति लाइव परफॉर्म करेंगी एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali, a special tickets from the venue box office, exclusive radio partner Leica Radio Network. Aur Ustad Rahat Fateh Ali Khan perform karenge, TCO presents Ustad Rahat Fateh Ali Khan's tribute to his uncle Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. Aur ye unki 30th death anniversary ke mauke par one day only ye concert hai, Sunday 18th April 2027 at O2 London, radio partner hai Leica Radio Network.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Leica
2: Radio. Shine skyscrapers and souks
3: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners,
2: flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protect.
4: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
3: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there?

क्या बताना कि आवाज किसकी थी, नाजिया हसन के अलावा कौन, और इल्तिजा क्या अच्छी इसमें शायरी है। सुफियान आपने लिखा, ये आपका फेवरेट सॉन्ग है, तो आपके नाम।

0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: So, आपके सवाल, हमारा सवाल, आपके जवाब और आपके मैसेजेस क्विकली शामिल कर लेती हूँ. जाने से पहले सवाल आपको बता दूँ, वो लोग जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया है, कि क्या हम दूसरों को माफ़ इसलिए करते हैं कि वो इसके मुस्तहिक हैं, या ये कि हमें खुद को सुकून चाहिए, हम माफ़ कर अपने आप को पुरसकून रखना चाहते हैं. सो बहुत से जवाब इसमें आए हैं और ज़्यादातर यही है कि आप चाहते हैं कि क्यों अपने ग्रजिस को हम रखें. यही बात से आपने लिखी है कि उन ग्रजिस से को हम रखना नहीं चाहते, इसलिए माफ़ कर देते हैं. तारिक एवान, आपने लिखा है कि मैं तो बंदा हूँ जो हर किसी को माफ़ कर देता हूँ. सो सीधी बात है, आपने इसका चक्कर ही छोड़ दिया कि किसी को आप उसमें नहीं लाते कि हाँ इसने क्यों ऐसा कहा, यानी अकाउंटेबल नहीं समझते तो माफ़ी आसानी से कर देते हैं. नदीम अजहर बाजवा, आपने लिखा है कि किसी की बात को याद तो रखना चाहिए, अपनी इज्जत भी मद्दे नज़र रखनी चाहिए. मद्दे नज़र आपने इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन बड़े आसानी से पढ़ा गया. मैं ये सोच रही थी कि ये क्या मद्देनजर. ओके ठीक है जी, तो ये बात भी ठीक है कि अपनी इज्जत और अपनी जो अना है उसका भी देखना चाहिए, लेकिन माफ कर देना बेहतर है, ये आपने लिखा है. और इसके अलावा मैसेजेस जो हैं रिगार्डिंग टू अदर सॉन्ग्स एंड स्टफ, वो भी बहुत से हैं. लेकिन अयूब साहब, आपने जो मैसेज लिखा है, आप बहुत इंटरेस्टिंग बंदे बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ. और आपने लिखा है कि मेरी डायरी में माफ करने का वर्ड नहीं है. बड़ा बहुत ये बड़ी बड़ा डायलॉग है जी, ये आपकी डिक्शनरी में, आपकी डायलॉग में, आपकी डायरी में लिखा ही नहीं है कि माफी करनी है. नो माफी एट ऑल. और आपने प्रोग्राम अच्छा करने पे मुझे वेल डन कहा है, तो आपने यानी कि शाबाश कही है मुझे, तो बहुत शुक्रिया शाबाश देने का. और वो तमाम लोग जैसे कि फरजाना, आपने मैसेज किया है, एस पी सज्जाद, आपने किया है हेलो मैसेज लिखकर, कुछ एक लोगों ने छोड़ दिया है. हेलो का जवाब मैं हेलो क्या क्या करना क्या कह सकती हूँ, हेलो आपको भी कह देती हूँ, यही मैं कर सकती हूँ लाइव. और रुखसाना, आपका मैसेज है और आपने भी गुड आफ्टरनून कहा. एन खान, आपने मैसेज किया आपको गीत बहुत अच्छे लगे, बहुत से इमोजीज, जो जो गीत आपको अच्छा लगा एन खान वो आपके लिए. और इसके साथ ही अयूब साहब, आपका मैसेज, नसीर अहमद भट्टी, आई थिंक आई मैंशन, लेकिन से वही बात है कि जिनके नकमे या जिनके रिक्वेस्ट पे नहीं हुई तो उसमें इसके अलावा और कोई बात नहीं कि हमारे पास मौजूद नहीं होती तो प्ले नहीं हो सकती.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: सो मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा इंडिया रकम भेजने के लिए 125.15. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events.
6: Powered by India Vala Paneer. Event managed by Jellyfish Events. Radio partner, Leica Radio Network.
7: Fancy winning something tasty on the side?
8: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
7: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
8: So order your Pepe's flame grilled piri piri Pepe-licious flavour and you could win big.
7: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Sunshine, skyscrapers and souks.
11: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
10: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
11: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
10: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
11: Southall Travel. At all protected.
12: Enjoy your Diwali with Caratino Better Ghee, the healthier, low-priced, cholesterol-free butter ghee alternative. Delicious Caratino Better Ghee is available from Tesco, Morrison's, Asda and local grocery shops. Look out for special Diwali offers on Caratino Better Ghee. In stores now.
13: Rizkan, next with Drive.
14: Leica Radio.
13: Leica Radio, Greater Manchester. Welcome to our new listeners in Bradford, Huddersfield and Leeds.
1: और इसके साथ ही रुबीना खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए. रिज खान स्टूडियोज में आ चुके हैं. मैं आपसे मिलूंगी मंडे आफ्टरनून इस वक्त के लिए. और इजाजत, खुदा हाफिज, बाय फॉर नाउ.

0: At the Golga Pianda Pani.
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer. आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
4: Laika Radio Network presents Men's Mental.

0: Satco Food Containers. Total satisfaction.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
6: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
6: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
9: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है. भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं. उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है. ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
10: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
11: ड्राइव टाइम विद रिज़ खान, स्पॉन्सर्ड बाय पेपेज़ पेरी पेरी.

0: एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
4: Next, Anissa Nazir with The Big Show.
5: Leica Radio.
4: Drive Time with Riz Khan. Sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: सुहाना सफर फिल्म का नाम और बहुत ही सुहाना गीत 1970 की फिल्म शर्मिला टैगोर जी और शशि कपूर जी। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हमारी शर्मिला जी, इसलिए उन्हें पर पिक्चर आए, इसे प्यारे से गीत हमने आपको सुनवाया। बेहद शुक्रिया पूरन कपूर जी, हाजिरी आज भी लग गई, पूरे वीक की लग गई, बल्कि अगले वीक की लग गई, लेकिन आप जरूर मैसेज कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। नदीम अजहर बाजवा जी वी आर बैक ऑन एयर, आ जाइए। वजाहत जी बेहद शुक्रिया। अवतार राशि जी ऑल इज कूल नाउ। बेप्सी राय जी वेरी वेरी वेरी वेरी लवली इवनिंग। प्रतिभा जी किदां किवें किंजु।
1: Leica Radio. Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.
0: और ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, कमल शिवनानी जी की पसंद है। फिल्म का नाम कांच और हीरा। आवाज वन एंड ओनली जनाब मोहम्मद रफी साहब की।

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: कहना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है कमल जी, क्या फरमाइश है. एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक भी जख्म को आराम नहीं आने दिया. उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया. एजाज साहब, आई वॉज वेरी मच हियर. और ये जो नदीम अजहर बाजवा जी, आप कंडीशंस लगा रहे हैं ना, कहते हैं कि मिडनाइट तक यहीं बैठिए, आप कवर कीजिए उन आवाज को जब हम सुन नहीं पाए आपको. अरे आप सुन नहीं पाए, मैं तो सुना रही थी.
0: ये है लाइका रेडियो.
2: जी हाँ बिल्कुल, लाइका गोल्ड अनीसा नासिर वेरी मच हाजिर. लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कल फिर गायब होने वाली हूँ. कल राजवीर होंगे आपके होस्ट, क्योंकि पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली जी परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, यानी कि कल फ्राइडे 16 अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ में, और संडे वो जो है परफॉर्म करेंगे 18 अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम. तो कल वाला शो मैं और रॉकी खान होस्ट कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर ड्यूटी ना करके कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं. राजवीर जी एडवांस में आपका शुक्रिया.
3: हाय, मैं हूँ रुबीना खान. सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में.
0: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो. लाइका रेडियो.
4: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
5: दिल चाहता है ऑन इट्स 25th एनिवर्सरी एट 2 PM दिस संडे एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा.
6: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी, तुम्हें क्या लगता है?
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saf/uk.
7: Sunshine, skyscrapers and souks for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all protected.
9: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
10: Fancy winning something tasty on the side?
11: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
10: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
11: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
10: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
0: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Take my phone. Why do I need to take my...
13: Hey, boy!
14: Coast Guard, we're stuck.
15: Okay, help's on its way.
14: Hold on, mate.
12: Shoes, tide, phone.
14: Back before dark, love. Okay.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: You know how fans shout at football matches?
18: Oh, wake up!
17: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: L-Y-C-A. This is Laika.

0: हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, गठरी में हमारी है ये सामान किसी का। दिखते नहीं क्या तुमको मेरी आंख में आंसू, दिखते नहीं क्या तुमको मेरी आंख में आंसू, एहसास ही कर लेता है इंसान किसी का। तू खुद ही बता दे कि बस एक तेरे अलावा, कब नाम लिया हमने मेरी जान किसी का। गो अक्ल ये कहती थी नहीं होगा मयसर, गो अक्ल ये कहती थी नहीं होगा मयसर, करता रहा अरमां दिले नादान किसी का। हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, गठड़ी में हमारी है ये सामान किसी का। लीजिए दोस्तों, बेहद शुक्रिया आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। शकीला नेडा जी, आपका भी खैर मकदम है प्रोग्राम में, और रानी जी सलाव में सुन रही है, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। न्यू मॉल्डन में हमारी उज्मा जी सुन रही है, और अकेली नहीं सुन रही, सच्ची में पाकिस्तान से आई हुई मेहमान के साथ सुननी है। अम्मारा जी, अम्मारा जी वेलकम टू यूके, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू द बिग शो। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में, जो यूं समझ लें कि बस दोस्तों की एक महफिल सजाई होती है हमने, और हम दिल के छाले फोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, दुखी बातें भी करते हैं, सुखी बातें भी करते हैं। इसके अलावा शायरी क्या है, दुखी सुखी बातें ही और क्या है। आई होप कि आप जब तक यहाँ रहेंगी, जबरदस्ती उस्मान जी आपको कोशिश करके सुनवाती रहेंगी हमारी नशरियात। सो एक दफा फिर से दिल के गहराइयों से वेलकम।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 125.8 Indian rupees, 86.2 Afghan Afghani, 367.4 Pakistani rupees, 163.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: The gold is currently trading at £101 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: वैसे कमाल नहीं है एजाज साहब, अभी पिछले साल ही तो मैंने मसरत जी को हैप्पी बर्थडे कहा था, उनको इतनी सारी दुआएं दी थी, बेस्ट विशेस दी थी, अब फिर उनकी सालगिरह आ गई है। चार साल आती है मेरी, वैसे साल में दो बार आती है। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। बेहद शुक्रिया अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मसरत जी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और अगला गीत मुजीब आलम जी की आवाज में है, बहुत ही प्यारा, और आई थिंक ये बड़ा सूट करेगा आज आपकी सालगिरह के मौके पर, तो आपके नाम करते हैं।
3: ये है
2: LEICA Radio,
1: from Greater Manchester to Greater London, we are LEICA Radio,
4: from Lollywood with love, with Anissa.

खुदा कभी न करे गम से हमकिनार तुम्हें, तेरे रस्तों को आसान करता रहूं, तेरे जीने का सामान करता रहूं, तेरा दामन सितारों से भरता रहूं। मेरी खुशियों से महके है तेरा चमन, रास आ जाए दुनिया की रंगीनियां, तुझको मालूम ही ना हो महरूमियां, तेरे रंगों से कौसे कजा भी बने, तेरे रंगों से रंगे वफा भी बने, तू सबा भी बने, तू दुआ भी बने, तू मसीहा बने, तू शफा भी बने, मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। आप भी अगर आज की खुशी मना रहे हैं तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के नाम। लीजिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है, और बशर्ते जिंदगी अब आपकी और मेरी अगली मुलाकात जो है वो मंडे होगी। कल आई एम बिजी समवेयर होस्टिंग द शो, लखविंदर वडाली जी, वैसे सोल्ड आउट शो है, लेकिन आना चाहे स्लाव में, क्रिस्टल ग्रैंड में, तो जरूर पता कीजिएगा, शायद कोई एक आध सीट हो अभी बाकी। आई वुड लव टू सी यू देयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, सुनवाते रहिएगा मेरे जाने के बाद लाइका गोल्ड की

0: सोने दे हवाले।
1: दिस इज अ नीसन नेसे विद द बिग शो।
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
4: बात क्या है बंटू?
5: अरे बोलो काक बसुंडी।
6: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
7: विनी, क्या हुआ? मैं तो
6: और लाइफ बन गई हेवन।
8: भाभी डायन है।
6: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
9: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
10: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
9: आप सिर्फ मजे लो।
2: Sunshine, skyscrapers and souks.
10: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southold Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
10: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southoldtravel.co.uk now.
2: Southold Travel. Pay less, enjoy more.
10: Southold Travel. At all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11.
12: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11,
12: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11. Danube Properties.
14: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं, बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल
1: नेक्स्ट
14: करें। पानी फेंकते।
1: The biggest romantic songs are up next on Love Sound.
15: Like मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।